0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा ले, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यूं ही बस बम डिगी करते हुए लंबा वीकेंड भी निकल गया यार, कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता है।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे एक यू नो X2, X3, X4 वाला एक बटन होता है, राइट, यू कैन स्पीड द क्लिप अप, वैसी फीलिंग आती है व्हेन इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, द लॉन्गर द वेकेशन इज द फास्टर इट काइंड ऑफ गोज। लेकिन यही जब यू हैव टू गो टू वर्क, काम का जो दिन होता है वो बिल्कुल ही 0.5x, 0.25x वैसे चलता रहता है यार। बट इस काम को आसान करने के लिए आ गया हूं मैं, यानी कि सिद्ध, सो मच कमिंग अप ऑन द शो। वन सॉन्ग दैट आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट, इट इज ब्रांड न्यू फ्रॉम कॉकटेल 2, इट्स कॉल्ड वल्ला। अबाउट प्रीतम दा, गाने बढ़िया बनाता है यार, मतलब चाहे कहीं से भी चुराया हो, इधर से उठाया हो, उधर से गिराया हो, लेकिन ही मैनेजेस टू लिफ्ट अ फिल्म अप। ब्रांड न्यू कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड वल्ला फ्रॉम कॉकटेल 2, हार्डी संधू की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट। इन केस यू हैव अ सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन टू, टॉप ऑफ योर प्लेलिस्ट, गेट्स यू अप एंड रनिंग, रीचार्जेस योर बैटरीज लाइक नो अदर सॉन्ग, लेट मी नो, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
1: Big 106.2.

0: 3,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Cocktail to say Valla, and ye wo film hai jisme Kriti Sanon has done something for the first time in her wonderful career.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: And that is star in an adults film. CBFC ki rating bahar aa gayi hai, and it's got an A certificate. So Cocktail 2 that releases डे आफ्टर या थर्सडे रात को आप जाकर देख सकते हैं सिनेमा हॉल नियर यू. यानी कि दिस वीकेंड की फिल्म कॉकटेल 2 स्टारिंग शाहिद कपूर, देयर इज रश्मिका मंदाना एंड देयर इज कृति सैनन. कृति सैनन नेवर डन एन ए रेटेड फिल्म बिफोर. शाहिद कपूर तो इस दुनिया के वेटरन. आई डिड अ वंडरफुल कपल ऑफ इंटरव्यूज विद शाहिद कपूर विद कृति सैनन एंड रिलीज दैट वेरी वेरी सून ऑन आवर इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम. वहां पर जाइए, यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन ट्रस्ट इन ऑल द मस्ती दैट वी डू अपार्ट फ्रॉम द रेडियो एज वेल. आपको वहां पर मिलेगी. सो गो एंड फॉलो अस 106.2 बिग एफएम पर जाइए फॉर ऑल द अमेजिंग एंटरटेनमेंट आउट देयर. लेकिन चलो नए गानों की हम लोग बातें कर रहे हैं, नए गाने साथ मिलकर सुन रहे हैं. दैट वॉज वल्ला ब्रांड न्यू फ्रॉम कॉकटेल 2. बट देयर इज अ सॉन्ग दैट इज टॉपिंग चार्ट्स, यू नो देसी चार्ट्स. अगर कहीं पर भी है इन एनी कंट्री, देयर इज वन सॉन्ग दैट इज टॉपिंग दोज चार्ट्स. वेरी न्यू प्राइवेट सॉन्ग कॉल्ड खत बाय नवजोत अहुजा. तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं. लिसन टू इट, लेट मी नो इफ यू शुड ऐड दिस टू आवर नॉर्मल प्लेलिस्ट. लेट मी नो हाउ मच यू लव दिस सॉन्ग. अगर आपने नहीं सुना, आई थिंक दैट यू विल फाइंड दैट इट्स वन ऑफ दोज परफेक्ट फॉर लिसनिंग एट 6:17 काइंड ऑफ सॉन्ग्स. नवजोत अहुजा विद खत राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: ईमेल करने के जमाने में आप खत लिखने की बात कर रहे हैं, दैट इज नवजोत आहूजा, बट इट्स गॉट दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म, डजंट इट? दैट सॉन्ग इज एन एब्सोल्यूट चार्ट बस्टर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: निखिल से पूछते हैं कैसा लगा ये गाना. निखिल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग?
2: फाइन फाइन सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया.
0: बढ़िया ना, मतलब एक मूड सेट कर देता है ये ट्यूसडे मॉर्निंग. आपका लंबा वीकेंड कैसा रहा?
2: एकदम अच्छा रहा. आज मंडे है ना, आज ट्यूसडे थोड़ी, आज मंडे.
0: अच्छा, मेंटली वी आर इन मंडे स्पेस टुडे या ट्यूसडे मॉर्निंग ब्लूज?
2: यस यस सर, आज आज लग रहा है कि आज वाकई

0: यस यस सर, आज आज लग रहा है कि आज वाकई में आज मंडे।
1: हाँ, मतलब यही एटीट्यूड रखो, फिर लगेगा कि मतलब अरे अरे हफ्ता खत्म हो गया, थर्सडे को फ्राइडे आ गया। सो या वेरी नाइस वेरी नाइस, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट सीखो यार। आर यू एन एमबीए निखिल और व्हाट?
0: नहीं, सर, मैं नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान।
1: आप पढ़ा सकते हो, क्लास ले सकते हो एमबीए में भाई, मतलब ये लेवल है आपका। निखिल से बताओ, कौन सा गाना सुनने के मूड में हो सुबह सवेरे?
0: अपना एक बैंड ऑफ बॉयज करके एक बैंड था, पुराना बैंड था।
1: हाँ, हाँ,
0: उसमें एक गाना था, जहाँ तुझे है जहाँ से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार,
1: तू ही मेरी प्यार गोरी। बैंड ऑफ बॉयज, क्या कहाँ से निकाला ये गाना यार, मतलब कोई आई एम श्योर। देखो निखिल, जब इतनी सुबह यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग लाइक दिस, देयर इज डेफिनेटली अ स्टोरी बिहाइंड इट। सो बताओ क्या क्या कहानी है?
0: नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। कल मैं ऐसे ही इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहा था, तो ये गाना बहुत दिन के बाद मैंने मतलब रील्स देखा ये गाने का।
1: अमेजिंग।
0: तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कल सिद को फोन करूं और मैं
1: हुकुम आपका सराखों पर। निखिल, हैव अ वंडरफुल डे एंड आई एम गोना प्ले दैट सॉन्ग आउट। एनीबॉडी यू वांट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू, या डू यू हैव अ बैंड ऑफ बॉयज, या आपको कोई कहते ना लॉन्डो का गैंग
0: है? नहीं, मेरे मेरे डॉटर के लिए करूंगा, मेरे वाइफ के लिए करूंगा, मेरे मम्मी के लिए करूंगा, मतलब दोज हु आर गर्ल्स, मतलब जो है वुमन से उसके लिए करूंगा मैं।
1: चलो वेरी नाइस,
0: प्यार करता हूं।
1: सुपर्ब निखिल, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपसे बात करके। यू हैव मेड माय मॉर्निंग, सो आई गिव दैट बैक टू यू। थैंक्स वेरी मच,
0: टेक केयर,
1: एंजॉय योरसेल्फ। दैट इज निखिल एंड हियर्स the song that I haven't heard in ages. Wow, what a song! आपके पास भी ऐसी कोई inspirations हैं? Not just songs. Give me a call 800-1062 just like Nikhil did. This is the Big Breakfast with me, Sid. The early morning requests are on Big 106.2.

0: वन फिल्म दैट आई मिस्ड इन सिनेमा हॉल्स, जो कि इंडिया में रिलीज हुई यहाँ पर नहीं, इज लगान.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: यप, मैं लगान 2-3 इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल लगान की बात कर रहा हूँ. आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दिस, बट 25th एनिवर्सरी है लगान की एंड इट वाज री रिलीज्ड ओवर द वीकेंड, यानी कि 12th से लेकर 15th, यानी कि 12 से लेकर कल तक इट वॉज इन सिनेमा हॉल्स एंड दे डिड अ वंडरफुल यू नो इवेंट्स ऑल थ्रू the city of Mumbai and all the star cast got reunited and so you'll probably these videos will pop up on your feed on social media. But yeah, UAE mein bhi release kar dete to yaar, I would definitely be one of the first few people to go and watch this in the cinema hall. Matlab itna excitement hota hai ki meri zubani ladkhada jati hai. It's one of my all time favorite films and all of this star cast, matlab angrezon ke side ka bhi jo cricketers tha wo sab aakar they were giving, you know, their commentary on how amazing that experience was. And it's been 20, can you believe it's been 25 years since Lagan. Agar aapne is weekend par lambi chuttiyon mein, long weekend par koi film dekhi, if you saw Governor Manoj Bajpayee, definitely give me a call 800-1062 par. But here's the other release jisko dekhne ke baad it seems there's not a moist, not one eye that is not moist in the cinema halls. It's called Main Vapas Aunga. A.R. Rahman ka gana, Mascara right here on Big 106.2.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: 7 बजकर 12 मिनट एंड यू नो द रेडियो प्रेजेंटर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बट हियर इन द यूएई स्पेशली वी गॉट दैट कनेक्शन गोइंग राइट. कभी फीलिंग आता है ऐसे कि वी ऑल इन दिस टुगेदर सेलिंग इन द सेम बोट. टुडे द 16th ऑफ जून इज अ डे टू सेलिब्रेट समथिंग दैट ऑल ऑफ अस डू every month at least.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
0: क्या वो एक चीज है यार जो हम लोग सारे के सारे करते हैं एक्सपैट कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है. एंड इट्स डे टू सेलिब्रेट टुडे. आई डिडंट इवन नो दैट देयर इज एन इंटरनेशनल डे टू सेलिब्रेट दिस थिंग. टुडे इज अ ग्लोबल ऑब्जर्वेंस. अगर आज आपको एक चीज सेलिब्रेट करनी है एवरी डे यू शुड फाइंड समथिंग टू सेलिब्रेट. एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन. इस लिस्ट में टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गेस व्हाट फैमिली रेमिटेंसेस. बिना एक्सचेंज रेट को देखे बिना ये सर्च किए गूगल किए कि एक्सचेंज रेट क्या है आज घर वापस पैसे भेजने का दिन है. स्पेशली रेलेवेंट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस एनआरआईज आउट हियर बिकॉज रेमिटेंसेस रिमेन वन ऑफ द बिगेस्ट एवरी डे. हाँ इंडिया यूएई मनी कॉन्वर्जेशंस यूएन ने 16th ऑफ जून को द इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली रेमिटेंस घोषित कर दिया है. एंड दे हैव नोटेड दैट द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज रिसीव्ड Guess what? 650 billion, with a B, $650 billion in remittances in 2024. That is a Dhurandhar number right there. Speaking of which, here's the Didi Sherebaloch version from Dhurandhar, The Revenge coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 7:23 और जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है उसके बाद वाला दिन होता है ना, मतलब एक लंबी खामोशी छा जाती है यार। अगर आप भी यू गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ अ फेज कि यार क्यों खत्म हो गई लॉन्ग छुट्टियां, ऑफ कोर्स यू नो दैट यू नॉट द ओनली वन, एवरीबॉडी ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू दैट सेम इमोशन। इट्स अ ट्यूजडे मॉर्निंग, फील्स मोर लाइक मंडे मॉर्निंग ब्लूज, बट इस काम को आसान करने के लिए यानी कि हेडिंग टू वर्क आफ्टर 3 days ऑफ छुट्टी इंस्टेड ऑफ 2, दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। एंड डोंट फॉरगेट insurancemarket.ae कंपेयर करता है द टॉप इंश्योरर्स सो दैट यू सेव up to 30% by comparing and buying the right car insurance at the right price. You can call or WhatsApp

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Singapore. Take advantage of unbeatable summer offers such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. T&Cs apply.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: कैसा लग रहा है लॉन्ग वीकेंड के बाद ट्रैफिक में फंसना? बिकॉज ट्रैफिक है काफी ऑल अक्रॉस. इट इज क्वाइट लिटरली बैक टू वर्क एंड E11 पर यू फाइंड ट्रैफिक एंड दिस इज अजमान इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रियल 2 से निकल के अल्फालाज एरिया गोइंग टूवर्ड्स जंक्शन ऑफ 88 यू फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक. यू ऑल्सो फाइंड अ बिट ऑफ स्लो मूविंग ट्रैफिक E11 पे फॉर साउथ अलनाद इंटरचेंज 1 पर एंड देन अल्टाउन स्ट्रीट इज ऑल्सो अ बिट कंजेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. 311 पर भी यू फाइंड कंजेशन. बट द स्टार ऑफ द शो टुडे इज D89 एंड दैट इज एयरपोर्ट रोड पर. एज सून एज यू टेक दैट एग्जिट फ्रॉम 311 गोइंग टूवर्ड्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पर इनफैक्ट ऑल द वे फ्रॉम अरेबियन सेंटर आपको ये ट्रैफिक मिलेगा D89 पर गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट एरिया. 25 से 30 मिनट की देर यहां पर, सो हो सकता है तो इस रास्ते को अवॉइड करें. D62 पर बेरू स्ट्रीट यू फाइंड बिट ऑफ कंजेशन. शारजा इंडस्ट्रियल इज अ बिट बिजी एंड देन देयर इज यूनिवर्सिटी सिटी की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक ऑन S116 एज वेल. ऑल्सो E44 अलखेल रोड पर गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस बे यू फाइंड 5 से 7 मिनट की देर.
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: आखिर सॉन्ग गिव मी गूज़बम्प्स सो मेनी मंथ्स आफ्टर इट्स रिलीज. यार जान से गुजरते हैं, क्या गाना बनाया शाश्वत सचदेव ने खान साहब के वोकल्स. बट वी टॉकिंग अबाउट अ फिल्म जिसका साउंडट्रैक गिव अस गूज़बम्प्स 25 इयर्स आफ्टर इट्स रिलीज.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आई गॉट श्वेता विद मी ऑन द फोन लाइन. गुड मॉर्निंग श्वेता, हाउ आर यू डूइंग?
2: Good morning, Sid. I'm doing okay. Recovering back from a very nice and long weekend.
0: Recovering ka kya matlab hai? You had a good time, so why you make it sound like a bimari thi koi?
2: No. Recovering as in like recovering to get back to work and get back to routine and things.
0: Lekin
2: like that.
0: Baat sahi hai yaar. All of us are like we all suffer from a disease out here, which is the long weekendia. We keep looking forward to the long weekend. So, did you have a good time?
2: Yeah, we do.
0: You had a good time?
2: Absolutely. I had a lot of fun. And rested and ate out and had a good time.
0: Achha, Shweta, aapne kabhi ladke reject kiye? किये है, right? किये है. Okay, so yeah, because I mean, आपसे बात करके मुझे लग रहा है that you are the kind of person who would be very good at giving relationship advice. So I want to ask you about a particular thing that's happened in the world. Okay, एक बाप है जिसने अपनी बेटी को एक WhatsApp मैसेज किया है. मैसेज में ये था कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो. बेटी ने पूछा क्यों. बाप कहता है क्योंकि वो लड़का ही कैन नॉट चेंज द टायर ऑफ हिज कार. वो पंचर बदल नहीं सकता. आई वांट टू आस्क यू, इज दिस क्या कैन यू चेंज द टायर ऑफ योर कार? फर्स्ट ऑफ ऑल
2: I can try. I know the steps.
0: Trying does not qualify.
2: I always, if I do end up in a situation like that, I get away with asking for help.
0: Yeah, there is a number that is given to all of us. It's a difficult question, you know, because aajkal I know how to change the tire. I am very willing because I'm so conjus that I don't want to spend that amount of money ke wo banda aayega and waste that time ke wo aayega apni moped pe and then he'll get that spare wheel and all of that. But there is no option kyunki jo nayi gaadiyan hai uske andar wo hota hi nahi hai. सामान ही नहीं है. एंड द स्टेपनी जो होती है वो डिफ्लेटेड है. सो यू कैनॉट लाइक यू कैनॉट फील एयर इन इट. सो दिस डैड नीड्स टू बी अ बिट मॉडर्न. क्या क्या लगता है आपको इस डिसीजन के बारे में?
2: I feel it's necessary to know the steps. That's for sure. Like obviously, going seeing so many times of it being done on TV or in person, you do need to know what goes where and how is it done. And you can't be completely unaware. Maybe you could give him a quick questionnaire and ask him a couple of more quick things. Just on basis of tire, I don't know, but
0: आपने वही वाला लॉजिक दे दिया है. जब बच्चे पूछते हैं ना कि पापा हम लोग ये एल्जिब्रा ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, बेटा आगे चल के कहाँ यूज होगा मुझे पता नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो द स्टेप्स बेटा. ओके, और क्योंकि आगे चल के किसी फाइनेंस पर्सन लाइक श्वेता ने अगर तुम्हें पीपीटी बनाने को बोल दिया ना, तो यू शुड नो द स्टेप्स बेटा. दिस इज व्हाट यू टेल योरसेल्फ व्हेन यू कम अक्रॉस अ यूजलेस सब्जेक्ट, राइट? चलो श्वेता, ये तो हो गई काम की बात, लेकिन अब थोड़ी टाइम पास की बात भी करते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट नॉट सच अ टाइम पास मूवी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मूवीज ऑफ आर टाइम्स. लगान की 25th एनिवर्सरी, एंड लास्ट टाइम मैंने एक आवाज सुनाई थी, जावेद अख्तर की आवाज थी, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट अ सॉन्ग जिसकी ट्यून जस्ट रिप ऑफ द वोकल्स, उसकी ट्यून भी अगर आपने इंस्ट्रूमेंट्स पे सुना दी किसी एस्किमो को, किसी मसाई को भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, रशियन मॉस्को, ही विल ऑलवेज टेल यू दैट इट इज अ सॉन्ग ऑफ डिवोशन. व्हाट सॉन्ग वाज ही टॉकिंग अबाउट?
2: We're talking about O Palan Hare.
0: Absolutely correct. O Palan Hare, Lata Mangeshkar ki awaz. I mean, a classic song if ever there was one. And all thanks to that devotional song, you won 2 open movie tickets. Go and enjoy the movie of your choice at a time of your choosing.
2: Thank you so much. Thank you.
0: अब ये contest में part लेने के जो steps हैं, इस पे आप थोड़ा PPT बनाकर आप हमको email कर सकते हो बाद में, so that it is beneficial for all the other listeners. All right.
2: I will send the PPT.
0: Enjoy. Thanks very much for taking part and absolute pleasure talking to you. That is Shweta, हमारी आज की winner है. And रोज सुबह हम लोग खेलते हैं the big Bollywood quiz. Chance for you to win 2 open movie tickets. बचना ऐ हसीनो. Right here on the big breakfast with me, Sid. नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ. I'm just telling you the name of the song. There's so much coming up on the show. FIFA के बारे में बात करने वाले हैं. India A में कल काफी ड्रामा हो गया. Keep it locked. This is Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the Bold Flavor-Packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: This summer, get ready for a big surprise that will make the heat worth it. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Coming soon, only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
4: इट्स गेम ऑन विद बिग टिकट.
5: अ गारंटीड 25 मिलियन दिरहम प्राइज.
4: 5 विनर्स ऑफ 1 मिलियन दिरहम ईच
5: प्लस वीकली ड्रॉज.
4: बाय नाउ एट bigticket.ae.
6: दिस इज एन 18 प्लस गेम. प्ले रिस्पांसिबली. TNCs अप्लाई.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर 1 ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: Get ready for 47 degrees Celsius. That's what the NCM is saying. And also lots of dusty weather you can expect over the coming days. Right now, it is 33 degrees Celsius. Nice and sunny start to this Tuesday morning as expected. Humidity at 64%. Winds blowing at 18 kilometers per hour. Highs of 35 right now. Lows of 29 degrees Celsius.
2: Al-Ras Auto AC Spare Parts. The number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets. Spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: स्टोरी बताओ जरा, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो एक कलर के ट्राउजर की जगह पांच कलर के ट्राउजर ले देते हैं?
1: We used to work together. I was her manager.
0: Oh, office romance.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: मंगलवार की सुबह 16th of June. Let's take a look at D89. सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक था सुबह से. It's much much better than before, but you'll still find a bit of congestion going towards the airport area. तीन चार मिनट की देर पकड़ के चलिए यहाँ पर एतिहाद मॉल से निकल के, अरेबियन सेंटर से निकल के, जैसे आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे. Then there's also series in the middle of D83 Ribat Street going towards Festival City. You'll find 4 से 5 मिनट की देर. Alkhel Road पर ट्रैफिक suddenly picked up at Russell Court Industrial going towards D3 and then a bit further towards Business Bay. D71 पे ट्रैफिक है, this is the Dubai Mall की सड़क. And then D75 Sheikh Rashid Street पर भी आपको मिलेगी 4 से 5 मिनट की देर.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: You know, we keep talking about the film industry, talking about sports stars, right? Lekin there are some legends when it comes to corporate life.
0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Look around you at your workplace. I mean, you'll find some people who are like totally capable of being legendary, right? Ek banda hai Korea mein, uske office mein rule tha work from anywhere. क्या बात है बॉस, वेरी गुड बॉस. एंड ही डिसाइडेड एज दिस वाज नॉट इनफ, हाँ, ही डिसाइडेड टू टेस्ट दिस रूल कि यार इसको मैं खींच के देखता हूँ कि कहाँ तक ये खींचता है ये रूल. सो व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू, ही डिसाइडेड टू वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम होटल भी नहीं, जो कि बहुत सारे यूएई के होटल्स आर ऑफरिंग यू ऑल द फैसिलिटीज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, बट यू कैन वर्क फ्रॉम होटल. ही डिसाइडेड टू, ड्रम रोल्स प्लीज, वर्क फ्रॉम रोलर कोस्टर. सो इफ यू हैवंट सीन दैट दैट वीडियो, जस्ट इमेजिन कि एक बंदा आपके जूम मीटिंग में बैठा है, उसकी उसकी मुंडी हिल रही है, ऐसे करके बात कर रहा है वो. बैकग्राउंड उसका बिल्कुल ऑफिशियल ही है, बिकॉज यू नो जूम हैज दैट यू नो फीचर टू चेंज योर बैकग्राउंड. सो ऑफ ही इज सिटिंग इन अ वर्क प्लेस लुकिंग प्लेस, लेकिन उसकी मुंडी ऐसे ऐसे हिल रही है. एंड देन लेटर यू रियलाइज दैट ही इज एक्चुअली टेकिंग दैट जूम कॉल सिटिंग ऑन अ रोलर कोस्टर जस्ट टू टेस्ट आउट द रूल, कि जब बॉस ने कहा वर्क फ्रॉम एनीवेयर, डज ही एक्चुअली मीन इट. Total legend in the corporate world, yaar. Haan, bataiye, which is the weirdest place that you've ever taken an official Zoom call? Got a great answer, give me a call, 800-1062. Here's Wallah from Cocktail 2.

0: 9:50 के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood।
0: खबरों का पटार लेकर कल ले आपको सुबह एक बार फिर से आपसे मिलने वाला हूँ on a weekday morning from 6 to 10। This is the show that gets you up and running. It's called The Big Breakfast with me, Sid। और एक काम आपको definitely करना है, you can follow us on Instagram 106.2 Big FM, वहाँ पर जाइए and you get lots of entertainment out there। बहुत दुनिया भर का entertainment साथ में information that you can count on 106.2 Big FM। Also you can follow me, I'm Sid Seth, SIDACTH। रहिए जोरा के साथ up until 2 PM on this Tuesday की सुबह से लेकर afternoon तक। I'm going to see you tomorrow। Till then enjoy the rest of your Tuesday। Bye bye।

पास है। खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: अरे को है क्या
1: काटेगी क्या
2: घर से बात तो खायल हो चुका है आपकी मोहब्बत का घायल हो चुका है बावला हो जाता है बावला
0: एक मिनट
3: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE. Part of Elite Group Holding.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट
6: मॉर्निंग टू यू बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ है आप टेम्परेचर राइट नाउ इज 34 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी अबाउट 57% विंड 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नो चांसेस ऑफ एनी प्रेसिपिटेशन बोले तो रेनफॉल स्टिक अराउंड दिस इज द बिग मिक्स आई एम फीलिंग इन फॉर ज़ोहरा
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई ओमान कतर केएसए एंड बहरीन Visit alras.me Big 106.2
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो
8: बहुत मैं अपनी फेवरेट हूँ
3: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उदी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ I'm feeling it for Zohra. Traffic right now. इस वक्त अगर आप Sharjah Industrial Area 12 के आसपास हैं, ट्रैफिक आपको मिलेगा बहुत ज्यादा मलीहर रोड. ट्रैफिक इज स्लो मूविंग इनटू दुबई. Sharjah Industrial Area 7 के आसपास आपको मिलेगा ट्रैफिक. अल किसेस 4 वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने वाला. अल किसेस 2 के आसपास मिलेगा आपको थोड़ा सा ट्रैफिक. देन कमिंग ऑन शेख जायद रोड E11 पे पैचेस में आपको ट्रैफिक मिलेगा ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट के आसपास. अगेन इफ यू कमिंग इनटू दुबई, देन टॉकिंग अबाउट DIFC लॉर्ड ऑफ ट्रैफिक ऑन D86, वहां पर भी आपको ट्रैफिक मिलने वाला. अल हफ्तूर सिटी के आसपास थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा. JBC के आसपास भी अगर आप हैं तो वहां पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा आपको. रासल कोट रोड पे हैं, E44 पे ट्रैफिक देयर एज वेल. एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4305.
0: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: Listen to her every day.
5: Mugambo! खुश हुआ।
6: So Zaid, I was talking about this boy, जब girlfriend ने कहा कि यार कुछ कपड़े ही नहीं है, I don't have anything to wear, which is a standard statement, we all say that. तो बंदे ने साल भर के कपड़े गिफ्ट कर दिए अपनी girlfriend को। जब आपकी girlfriend आपसे बोलती है ऐसा कुछ, तो आप क्या करते हैं Zaid?
7: So very recently my wife told me कि she does not have enough trousers. I went to a shop, bought exact same trouser in 5 different colors, and I was like, please. Nothing for next 2 months.
6: Very nice. मतलब such men do exist, और वो भी बीवी के लिए। वाह यार।
7: And it happened only 2 days back.
6: बीवी is there with you? Hi, you are very lucky. Touchwood. मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये AI generated story है, ऐसे बंदे होते नहीं है। आपके बंदे ने तो कह दिया यार।
8: Yes, this type of men exists.
6: अमेजिंग। कहाँ से डाउनलोड किया है ये Zaid को आपने? मुझे भी चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ जरा, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो एक कलर के ट्राउजर की जगह 5 कलर के ट्राउजर ले देते हैं?
7: We used to work together. I was her manager.
6: Oh, office romance.
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
1: हेलो, हाय, मॉर्निंग टू यू। बिग 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ। टेम्परेचर राइट नाउ इज 35 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 41 डिग्री सेल्सियस। अपना ध्यान रखिए, प्लीज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप वॉक कर रहे हैं फ्रॉम मेट्रो स्टेशन टू ऑफिसेज रिस्पेक्टिवली या कहीं भी और, अम्ब्रेला छतरी का सहारा लीजिए। एंड अगर आपके पास हाथ पंखा है, दैट इलेक्ट्रॉनिक थिंग, दैट ऑल्सो वर्क्स वंडर्स फॉर यू। ऑलराइट, ऑल दी सॉन्ग्स आर वंडरफुल एंड दैट्स व्हाट वी प्ले ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम 10 o'clock टिल 2 o'clock. AP Tillno and Shreya Ghoshal on the vocals of this one.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: Bollywood. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
3: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
0: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Two.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Missed your morning buzz? Yes or no?
2: अच्छा श्वेता, आपने कभी लड़के reject किए? आपसे बात करके मुझे लग रहा है that you are the kind of person who would be very good at giving relationship advice. So I want to ask you about a particular thing that's happened in the world. Okay, एक बाप है जिसने अपनी बेटी को एक WhatsApp मैसेज किया है. मैसेज में ये था कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो. बेटी ने पूछा क्यों? बाप कहते हैं क्योंकि वो लड़का ही कैन नॉट चेंज द टायर ऑफ हिज कार. वो पंचर बदल नहीं सकता. आई वांट टू आस्क यू, इज दिस क्या कैन यू चेंज द टायर ऑफ योर कार फर्स्ट ऑफ ऑल?
3: I always, if I do end up in a situation like that, I get away with asking for help. You do need to know what goes where and how is it done, and you know, you can't be completely unaware. Maybe you could give him a quick questionnaire and ask him a couple of more things. Just on basis of tire, I don't know, but...
2: आपने वही वाला लॉजिक दे दिया है जब बच्चे पूछते हैं ना कि पापा हम लोग ये एल्जिब्रा ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं. बेटा आगे चल के कहाँ यूज होगा मुझे पता नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो द स्टेप्स बेटा. ओके,
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Missed your morning buzz?
1: उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो।
2: अच्छा श्वेता, आपने कभी लड़के रिजेक्ट किए? आपसे बात करके मुझे लग रहा है that you are the kind of person who would be very good at giving relationship advice. So I want to ask you about a particular thing that's happened in the world. Okay, एक बाप है जिसने अपनी बेटी को एक WhatsApp मैसेज किया है. मैसेज में ये था कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो. बेटी ने पूछा क्यों? बाप कहते हैं क्योंकि वो लड़का ही कैन नॉट चेंज द टायर ऑफ हिज कार. वो पंचर बदल नहीं सकता. आई वांट टू आस्क यू, इज दिस क्या कैन यू चेंज द टायर ऑफ योर कार फर्स्ट ऑफ ऑल?
3: आई ऑलवेज, इफ आई डू एंड अप इन अ सिचुएशन लाइक दैट, आई गेट अवे विद आस्किंग फॉर हेल्प. यू डू नीड टू नो व्हाट गोज वेयर एंड हाउ इज इट डन, एंड यू नो यू कांट बी कंप्लीटली अनअवेयर. Maybe he could give him a quick questionnaire and ask him a couple of more things. Just on basis of tire, I don't know, but...
2: आपने वही वाला logic दे दिया है जब बच्चे पूछते ना कि पापा हम लोग ये algebra ये trigonometry क्यों पढ़ते हैं. बेटा आगे चल के कहाँ use होगा मुझे पता नहीं है, but it's very important to know the steps बेटा, okay?
0: Energy and action. Monday to Friday 6 AM to 10 AM. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-24/7. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: गुड आफ्टरनून टू यू बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं आप. ट्रैफिक इस वक्त है शारजाह इंडस्ट्रियल एरिया 12 एज ऑलवेज. वहां पे मिलेगा आपको, अगर आप इस वक्त अल दरारी कमर्शियल्स के आसपास है, शारजाह इंडस्ट्रियल एरिया 7 के आसपास आपको ट्रैफिक मिलेगा. रिग्गा के आसपास थोड़ा सा बहुत ट्रैफिक, D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट स्लो मूविंग ट्रैफिक है. वहाँ पे भी अगर आप इस वक्त हैं अल खेल D68 पे, वहाँ पे एक देयर इज अ फेंडर बेंडर, थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा आपको वहाँ पे पैचेस में. E44 के आसपास भी आपको एक एक्सीडेंट मिलेगा. रासलकोट इंडस्ट्रियल एरिया 1 and 2 स्लो मूविंग ट्रैफिक देयर इज वेल. अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 3 के आसपास एंड 2 के आसपास आपको ट्रैफिक मिलने वाला है. बात करूं इस वक्त E11 शेखजाद रोड लुक्स फाइन, नो प्रॉब्लम्स एज सच. एनी द ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4305 व्हिच इज 4305.
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: झुमका।
1: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है कि मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि करें क्या। मतलब उसका हम स्नोबॉल बनाएं या फिर स्नो व्हाटएवर बनाएं। सिर्फ 41 डिग्रीज है, इट फील्स लाइक 47 डिग्री सेल्सियस। बिग 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ, ह्यूमिडिटी अबाउट 55%, विंड 21 किलोमीटर्स पर आवर। ऑल दिस गाना दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ ठंडाई टू यू, दे कम एज अ पैसिफायर, टेक इट अवे अंटिल 2। दिस इज द बिग मिक्स।
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन। विजिट alras.me। बिग 106.2 Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
2: Mugembo!
3: So, I was talking about this boy, जब girlfriend ने कहा कि यार कुछ कपड़े ही नहीं है, I don't have anything to wear, which is a standard statement, we all say that. तो बंदे ने साल भर के कपड़े गिफ्ट कर दिए अपनी girlfriend को। जब आपकी girlfriend आपसे बोलती है ऐसा कुछ, तो आप क्या करते हैं जाहिद?
4: So very recently my wife told me कि she does not have enough trousers. I went to a shop, bought exact same trouser in 5 different colors, and I was like, please. Nothing for next 2 months.
3: Very nice. मतलब such men do exist, और वो भी बीवी के लिए। वाह यार।
4: And it happened only 2 days back.
3: Bibi is there with you?
5: Hello.
3: Hi, you are very lucky. Touchwood. मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये AI generated story है, ऐसे बंदे होते नहीं है। आपके बंदे ने तो कह दिया यार।
5: Yes, yes, this type of men exist.
3: अमेजिंग। कहाँ से डाउनलोड किया है ये जाहिद को आपने? मुझे भी चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ जरा, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के जो एक कलर के ट्राउजर की जगह 5 कलर के ट्राउजर ले देते हैं?
4: वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर, आई वाज हर मैनेजर।
3: ओहो, ऑफिस रोमांस।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक। 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.4

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. T&Cs apply.
1: Point two, the beat of

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यार आपने सुना एक थी डायन से गाना बिग 106.2 पे। यार जब भी मेरे घर पे आते थे, स्पेशली मेरे स्कूल टाइम पे, उनको पता होता था कि मेरे मम्मी की हाथ के ये अगर मिल जाए तो वो दो तीन ग्लास पी जाएंगे। बिग 106.2 पे गुड आफ्टरनून टू यू, आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ
1: विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अपने आप को ठंडा रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें पीनी पड़ती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें ये जो चीज़ है विच इज़ द क्लासिक इंडियन लेमनेड, वो बहुत काम आता है, स्पेशली विद इट्स फुल ऑफ आइस एंड इट्स सो गुड। हाँ, बस ये ध्यान रखना आपको कि सर्द गर्म ना हो जाए, आपको एकदम साफ गर्मी से और एकदम साफ ने पी लिया देन तो ये नाटक कर देगा आपके साथ, फनी हो जाएगा फिर। हमें वो फनी नहीं करना, हमें इंटरेस्टिंग बनाना है इसको। आई आस्क्ड यू विच इज़ दिस स्पाइस्ड क्लासिक इंडियन लेमनेड कॉल्ड, एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज शिकंजी, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जैसे वेस्टर्न लेमनेड होता है उसमें अलग चीज़ें का टेस्ट आता है, ये एक डिस्टिंक्ट चटपटा सा स्वाद होता है। इट्स अ टैंगी स्पाइसी फ्लेवर बिकॉज इसमें स्पाइस ब्लेंड डलता है, कुछ लोग चाट मसाला भी डाल देते हैं, लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो पुट इन रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, एंड इट्स सो गुड फॉर रिहाइड्रेटिंग इन द स्कॉचिंग समर मंथ्स। एंड इसके लिए बिल्कुल सिंपल लेमन जूस, स्वीटनर में आप चीनी डालो या फिर जैगरी डाल सकते हो, और इसका जो लिक्विड बेस है, लिक्विड बेस यू कैन ईदर पुट सोडा टू इट और यू कैन जस्ट कीप इट लाइक क्लासिक वाटर। आई लाइक इट क्लासिक वाटर। And the icing on the cake is mint leaves, पुदीने के पत्ते। उससे जो स्वाद आता है ना इसका, जो बिल्कुल एक कहते ना माहौल बदल गया, that's what mint leaves or pudina does to this. Try the shikhanji at home. It's very simple to make. Lemons are there, available everywhere. And it just does wonders to your skin and to your body as well. Fast Track Song of the Hour brought to you by Self Drive. Wonderful song. The track is Sajde Arijit Singh ki awaaz.
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the hour, episode brought to you by Insurance Market. And my theme over today, I'm discussing double roles. Hema Malini ji with Sita and Geeta. Dekhiye film apne Sita Geeta. क्या फिल्म है यार बहुत बढ़िया एक बेचारी साधारण सी एक एकदम बढ़िया यू नो फुल ऑन लाइक द प्रॉपर फीमेल डजंट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन गिव्स इट बैक देयर एंड देन
2: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
1: एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म डबल रोल्स की बात हो रही है डबल रोल हमेशा से एक आइकॉनिक एक मोमेंट रहा है इंडियन सिनेमा में बिकॉज जो वेरियंस लेके आते हैं डायरेक्टर्स इन डबल रोल चाहे वो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज हो डबल रोल की या फिर री इनकार्नेशन हो वो बहुत कुछ देखे जाता है इन अ फिल्म एंड पीपल ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गेट ग्लूड टू इट बिकॉज अदरवाइज दिखते कहाँ हैं है ना आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस प्रॉबली थ्रू सिनेमा और द रेलम ऑफ सिनेमा But having said that, बहुत ही compelling काम करना होता है contrasting personalities को दिखाना एक साथ editing में बहुत जोर लगता है especially आज के time पे तो AI सारी edits कर देता है लेकिन during those days, back those days, कितना challenging होता होगा double double scene repeat करने पड़ते हैं and it was such an excruciating time for all these artists at that time. Now, going back to the film which rocked at that time, I'm talking about Chaalbaaz, इसमें Anju Manju, exactly Sita Geeta का personality trait but this time it was not Hema Ji, it was the superstar, the first female superstar Shriji Shridevi and my god what did she do she ate the character she left no breadcrumbs whatsoever
3: teri lipstick imported hai chamak chhallo lekin teri zuban khalis desi hai वैसे भी अपने देश में सबको अपनी अपनी जुबान बोलने का पूरा हक है ना तूने अपनी जुबान बोली अब मेरी बारी है बोलो
4: जानी ये चाकू है क्या है
3: चाकू
4: हाँ लग जाए तो खून निकल आता है जिंदगी भर तूने अपनी स्टाइल से मेकअप किया होगा आज तेरे इस चोटे का मेकअप हम अपने स्टाइल से करेंगे
1: एंड उसके बाद जो मेकअप होता है रोहिणी हथंगड़ी का What a film. It was such a comic riot at that time. And Shriji, oof, she's an unbelievable performer. No wonder she was a megastar. Usi film se gana, take it away. Kisi ke haath na aayegi ye ladki. All about double roles in my theme of a big 106.2 favorite, a part of One Asia Network.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से.
3: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: डबल रोल स्पेशल आप सुन रहे हैं बिग 106.2 पे और ये है गाना फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम. रीइनकार्नेशन है इसमें. एक गाना मैंने रखा है रीइनकार्नेशन. प्रकाश मखीजा ये जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ओम शांति ओम में और उनका मर्डर हो जाता है और उसके बाद ओम कपूर वो आते हैं एज अ वेल्दी सुपरस्टार जो है री इनकारनेटेड वर्जन ऑफ ओम प्रकाश और वो डिटर्मिंड है कि वो बदला लेंगे अपनी पिछली जिंदगी का पास्ट लाइफ का. द ट्रैक इज धूमतना फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम. श्रेया घोषाल की आवाज उज्जवल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स वी आर पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Fast track song of the hour, Apne Suna, brought to you by Self Drive. I'm bringing you all the double roll special in my theme over today. Kuch aisi film hai jisme double roll ka hi pura script tha. Ye Judwa se aapne gana suna. Salman Khan. Well, Judwa bhai, Raja aur Prem, aur wo separate ho jate hain bachpan mein jab wo paida hote hain, but are reunited by fate. Aur Ratan Lal ko harane ke liye wo jo ek gunda hota hai, mawali hota hai, and they want to destroy, you know, this Malhotra family. And both of them, they come in. वही जो कहानी का जो benchmark है वही है, एक बदमाश है और एक बहुत simple सा प्यारा सा लड़का है. And how they sort of bring both of it together.
0: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: और ऐसा क्यों होता है कि एक बदमाश दिखाया जाता है और एक बेचारा बिल्कुल संत टाइप होता है? दोनों भी तो बदमाश हो सकते हैं, दोनों संत टाइप भी तो हो सकते हैं. एक बदमाश एक संत. जैसे अब ये जो अगला गाना है, कहो ना प्यार है, राज एंड रोहित, इसमें भी बेचारा एक हार्डवर्किंग सा आदमी है ना, संत तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन शरीफ जिंदगी जीने वाला लड़का, और उसको कैसे मार दिया जाता है. एंड देन ऑफकोर्स जो मेन स्टार आता है वो आता है न्यूजीलैंड से, और कैसे फिर वो बदला लेता है अपने भाई का. एंड अमीषा पटेल कन्फ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है भाई, ये तो चला गया था, ये फिर से कैसे वापस आ गया है. एंड अगेन इट वॉज अ ब्लॉक बस्टर फिल्म, फिल्म दैट ब्रॉट ऋतिक रोशन टू अस, एंड यू नो फॉर एवर. Kahuna Pyare is etched in our brains, and so is his song. This was the anthem for all the millennials, for everyone who wanted to do a little bit of what Ritik Roshan could do. Lucky Ali ki awaaz, the track is Ikpal Ka Jeena aapke saath until 5 o'clock.

0: 105.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat Coins. इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही.
1: Big 106.2.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
3: Drop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
4: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto spare parts dealer in the Middle East.
7: Hello, hi, good evening to you. Big 106.2 pe Ujjwal Khanna ke saath hain aap. Temperature right now is about 36 degrees Celsius, feels like 43 degrees Celsius. Koi mail nahi hai LHS, RHS ka. 36 feel ho raha hai. Nahin, 36 dikha raha hai, lag raha hai. 43, kya hai? Jo bhi feel ho raha hai, aapko lag raha hai na. Garmi hai, to matlab garmi hai, obviously. Bas ye hai ki aap पीने का ध्यान रखिए, पानी पीने का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है पानी पीना. एंड अपने सामने एक बोतल रख लोगे तो आपको बार बार बोतल याद दिलाती रहेगी कि प्लीज़ फिनिश मी अप, यू नो, टैंक मी अप. दैट्स व्हाट यू नो वाटर डस्ट टू यू. एनीवे, सुभान अल्लाह, श्री राम की आवाज़ में. राइट आफ्टर दिस, सुभान अल्लाह, आपका करियर जाएगा अगर आप AI में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे. आई विल लेट यू नो ऑल द डिटेल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द सॉन्ग. स्टिक अराउंड.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरीन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Score!
4: 25 million dirhams with big ticket.
3: 5-1 million dirham prizes.
4: Plus weekly cash draws.
3: Don't miss your shot.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: Hello, hi, good evening to you. Big 106.2 pe Ujjwal Khanna ke saath hain aap. Sun rahe hain Big Life. Traffic right now looks easy. The life is good. Life's good. Right now, अगर आप शेख जायद रोड पे हैं तो ट्रैफिक एकदम ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट के आसपास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, बिजनेस बे के आसपास इंटरमीडियट ट्रैफिक मिलेगा आपको। अगर आप बर्षा साउथ में हैं एंड इफ यू कमिंग फ्रॉम अरजान, वहाँ पे 2-3 मिनट का डिले है, बट लुक्स फाइन, प्रीटी मच फाइन। अलकुज इंडस्ट्रियल एरिया में आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, वर्का के आसपास अगर आप हैं ट्रैफिक स्लो मूविंग मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट इस वक्त अगर आप शारजा बाउंड हैं, इफ यू अजमान बाउंड, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। नेशनल पेंस के आसपास अबाउट 15 मिनट्स का डिले है। एयरपोर्ट रोड पे हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक आपको वहाँ पे भी मिलेगा। सोनू निगम के बाद ट्रैक इस चोरी किया रिजी आपके साथ अंटिल 5। दिस इज द बिग लाइफ, बिग 106.2 पे।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2।
7: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ इन कॉन्वर्सेशन विद मानसी और मानसी के अंदर का फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी बब्बू रत्नानी मैंने कहा था शी इज अ बब्बू रत्नानी शी ऑल्सो टेक्स यू ऑल्सो टेक ऑल दैट डॉग फोटो कैट फोटो ट्री फोटो
2: No, I like getting clicked. You know that. मैं उनमें से हर जगह एक नहीं फोटो ले रहा है और दस लो एंगल ये नहीं है वो नहीं है
1: बट फिर भी तेरी गैलरी में करीबन 51,000 तस्वीरें तो
2: हैं सब मेरी हैं
1: अच्छा
2: तो you told me about the prize money मैं तो पैसे के लालच में बोल रही
1: हूँ okay so this prize money is basically for the flame tree competition अगर आप जाओगे इस वक्त दुबई में आपको बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर के जो झाड़ हैं वो दिखेंगे जिसमें बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं उसको फ्लेम ट्री कहते हैं बेसिकली और उसके लिए एक मुकाबला हो रहा है वेर यू नो इफ यू get selected if you win the cash prize you win 15,000 dirhams the first prize the second prize is 10,000 dirhams and the third prize is 5,000 dirhams so aapke aas pass jitne bhi park hain aap wahan pe jao aur mujhe aisa lagta hai ki khali jhaad ka photo lene se kuch farak nahi padega I think mere ko lagta hai mansi wahan pe agar hogi to mere khayal se first prize jeet sakte
2: मुझे सजेस्ट कर रहा था यू नो वी नो समवन जिनके यहाँ पे एक डॉगी है कहता कुत्ते को पेड़ पे चढ़ा के फोटो
1: बट मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ यू गाइस हैव अ फोटोग्राफर इनसाइड यू गेट इट आउट एंड यू नेवर नो यू नो व्हाट स्ट्राइक्स व्हेन एंड 15,000 dirhams इज अ ग्रेट मनी फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ सैल्वेज योर प्राइड एंड देन प्रोबब्ली यू कैन टेक फोटोग्राफी एज लाइक योर करियर दी करियर
2: लॉट ऑफ हस्बैंड्स शुड अप्लाई हु आर ऑलवेज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ देयर वाइव्स फॉर द ग्राम
1: हां व्हाई डोंट यू टेक पुट अप wife's picture with that jhaad with that flame tree and you never know you back that up so all the best to you thoda motivation side from my side now comes in Mansi and she talks about her 5 to 9 experience on the big thread

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ब्रो, इमेजिन यू बुक योर ड्रीम होम and then drive away in a brand new Jador T2.
3: Yeah, right. I wish.
2: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
3: And the apartments?
2: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
3: I'm going now.
2: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: चॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This summer, upgrade your drive with Jetour. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind, thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE. Part of Elite Group Holding. TNCs apply.
3: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the Bold Flavor Packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 36 डिग्रीज आउटसाइड, आज लो जाएगा अराउंड 29। प्रीटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी है 58% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, you have Big Thrill and Mansi. We're playing the 5-second rule, and the first one to join us this evening is Mr. Abdul Kareem. Good evening.
3: Good evening.
2: बड़ी सीरियस टाइप के आप लग रहे हैं मुझे, कम बात करने वाले, नोटेड विद थैंक्स लिखने वाले. क्यों आप इतने सीरियस क्यों हैं सर जिंदगी में?
3: नहीं, बचपन से ऐसे हूँ.
2: अरे वेरी नाइस, मतलब कम बात करना, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. क्या करते हैं करीम साहब?
3: आई एम अ केमिकल इंजीनियर बाय
2: प्रोफेशन. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, मतलब काफी पढ़ाई आपने करी. अब आप बात ही नहीं करोगे लोगों से तो फिर पढ़ाई करोगे ना फिलहाल. हाउ वाज योर लॉन्ग वीकेंड?
3: बिट बिजी विद द जॉब.
2: You were working?
3: We are just moving oil. Yeah, exactly.
2: Oh, very
3: nice. We work
2: nice.
3: When the oil moves.
2: An employee who's happy going to work on the long weekend is very, very rare. I hope my boss is not listening to our conversation. I'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheeze batani hai 5 second ke andar.
1: 5 second rule. Oh, yeah.
2: Quickly name 3 Bollywood movies jinke title mein hum aata hai.
3: हम आपके हैं कौन?
2: और
3: हम साथ साथ हैं.
2: एंड
3: हम
2: ओ ओ ओ फटाफट खेलने वाला गेम है सर ये. 3 थिंग्स दैट आर व्हाइट इन कलर एंड यू कैन ईट. व्हाइट
3: ड्रैगन फ्रूट.
2: व्हाइट टॉवल ब्रेड ड्रैगन फ्रूट. कहाँ से आपके दिमाग में आया? राइट, नेम 3 बॉलीवुड एक्टर्स जिनके नाम ए से शुरू होते हैं. ये तो इजी है.
3: आर्यन.
2: आर्यन एक्टर नहीं है वो, डायरेक्टर है आर्यन. हाँ टाइम खत्म सर, 5 सेकंड वाला गेम है. आप बहुत सोच सोच के खेल रहे हो, बिना सोचे खेलो ठीक है. 3 ऐसी चीजें जो आप खुद के बारे में बदलना चाहते हैं.
3: I want to talk more to people.
2: Yes.
3: Want to earn more in life, enjoy life.
2: तो आप enjoy क्यों नहीं कर रहे हो सर? एक ही तो जिंदगी है, enjoy करना बनता है. 3 things that you would like to say to your wife, but आप चुप चुप रहते हैं तो बोल नहीं पाते. अरे टाइम ही खत्म हो गया सर.
3: ठीक है, नेक्स्ट टाइम.
2: आई लव यू बोलते हो? नहीं बोलते हो? नहीं बोला? पहली बार कब बोला था?
3: आई डोंट रिमेम्बर.
2: आई थिंक गो होम टुडे एंड जस्ट से आई लव यू टू हर, शी विल लाइक इट. यू प्लेड वेरी बैड बट आई एम ग्लैड यू स्पोक टू मी एंड स्पीक टू पीपल यू लव मोर ऑफन. हैव अ ग्रेट इवनिंग करीम. बाय. यही है 5 सेकंड रूल, आपने खेलना तो एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पर.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: Score!
5: 25 million dirhams with big tickets.
4: 5 1 million dirham prizes.
5: Plus weekly cash draws.
4: Don't miss your shot.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Alright, patchy traffic at the moment. If you are on the Jumeirah Road, Sukim ke paas bhi slow moving traffic hai. There's heavy traffic though, Alkuz Industrial Area ke paas. And traffic trailing very very slow, 25 se 30 minute ka delay agar ab Sheikh Mohammed bin Zayed pe hai. Festival City again packed, Garud ke paas traffic hai. Heavy traffic ne Karama, Mankul, Udmeh tha. And filhaal dikha raha hai 35 minutes Sheikh Zayed par. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Brother,

0: मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लो स्लो स्लो।
1: बिग 106.2

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill of Mansi. We are playing the 5-second rule. Mazedar game hai. Aapko milte hain 5 seconds. Main aapko deti hoon kuch categories. 3 cheeze batani hoti hai 5 seconds ke andar. Filhal Rohit hamare saath. Tumko kiske gam ne mara? Kya hua Rohit? Kyun dukhi ho?
2: नहीं नहीं मानसी, सब ठीक है। पता नहीं यार क्यों बोल रहे थे।
1: आपने जैसे मुझे हेलो बोला था, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है कि
2: अरे नहीं, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, जैसे टर्न ले रहा था, इसलिए आई एम अ लिटिल कॉशियस।
1: वेरी नाइस, फोकस देयर, वरना वहाँ पे फाइन लग जाएगा। तो सच्ची में हमको किसके गम ने मारा? क्या करते हो रोहित?
2: फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ।
1: अरे आग से खेलते हैं, आग से खेलते हैं। वाह, वेरी नाइस, बड़े इंप्रेसिव लोग आ रहे हैं आज। सो कैसा रहा लॉन्ग वीकेंड, क्या किया?
2: ऑल गुड, वाज एट होम, सब बढ़िया, चिल मारा घर पे ही, और जाना तो कुछ खास था नहीं।
1: सब पैसे बचा रहे हैं, सब पैसे बचा रहे हैं घर पे। मैं भी घर पे बैठी थी। चलो रोहित, प्ले द 5 सेकंड रूल। आपको रूल्स पता ही है। 5 second rule. Oh
2: yeah.
1: Quickly name 3 Bobby Deol की movies. अरे वाह, खत्म।
2: बिच्छू।
1: अरे हो गया बिच्छू, 5 second के अंदर फटाफट खेलने वाला गेम है। Quickly name 3 things that you pick from a hotel room.
2: साबुन, टावल,
1: शैम्पू। अरे टावल भी ले जाते हो? हैं, वो अलाउड नहीं होता है। वैसे मैं बता रही हूँ आपको, टावल लेना अलाउड नहीं होता है। हाँ, शैम्पू सोप आप ले जा सकते हो, टावल मत लेके जाया करो, नाम बदनाम हो रहा है हम सबका। 3 things that are green in color you can eat.
2: कुकुम्बर,
1: लीफ। अरे भाई साहब खत्म हो गया टाइम, कौन सी पत्तियां खा रहे हो यार? मतलब पालक, मेथी, फटाफट, यू टू बी वेरी क्विक।
2: इंग्लिश में नाम बोलने में टाइम लग जाता है।
1: अच्छा, 3 लड़कियों के नाम बताइए जो ए से शुरू होते हैं।
2: आरती, आकांक्षा।
1: आए हाय, और आरती आकांक्षा पे गाड़ी रुकी। कौन है आरती, कौन है आकांक्षा?
2: पता नहीं यार,
1: झूठ
2: तो नाम आया,
1: झूठ। होगी कोई स्कूल कॉलेज वाली पुरानी?
2: हाँ।
1: है ना, तो दोनों थी कि
2: नहीं?
1: अच्छा
2: नहीं।
1: एक थी आरती थी कि आकांक्षा थी?
2: कोई भी नहीं था।
1: कितना झूठ रोहित, कितना झूठ। ऐसी थोड़ा ना एवी नाम आरती और आकांक्षा आउट ऑफ द ब्लू आ जाएंगे। अभी हो गया आपकी शादी वादी?
2: हाँ हाँ, यस।
1: ठीक है, रोहित की बीवी को अगर आप जानते हैं और इस वक्त हमें सुन रहे हैं, घर जाके उनसे बोलिएगा कि आरती और आकांक्षा की जरा डिटेल निकालें। मूविंग ऑन, 3 चीजें जो शादी के बाद बदल गई हैं रोहित, जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं।
2: आपका टाइम, लाइफ।
1: खत्म, लाइफ ही नहीं पसंद आ रही है।
2: टाइम, लाइफ, मनी, मनी, मनी।
1: शादी के बाद खर्चा बढ़ गया है?
2: यार बढ़ जाता है ना, obviously responsibility है family की।
1: अच्छा,
2: but it's not negative.
1: It's not negative. आरती और आकांक्षा, आरती आकांक्षा को टाइम ना दे पाना, वो भी तो है important. 5 second rule. Oh yeah. बहुत खराब खेला रोहित, but मजा बहुत आया। आरती आकांक्षा के बारे में मैं जरूर पता लगाऊंगी किसी दिन, कहीं फंसी होंगी फेसबुक के आर्काइव में।
2: मैंने अभी जस्ट सुना ही था, स्टार्ट किया था जस्ट।
1: हाँ।
2: और फर्स्ट टाइम मैंने ये गेम देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया आपको।
1: मजेदार है कि नहीं?
2: और विद इन 1 सेकंड में कॉल लग भी गया। यस, इट्स एंजॉयिंग।
1: चलो जी, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ड्राइव सेफ रोहित।
2: श्योर, थैंक यू, बाय सो मच।
1: फिलहाल दिस इज द 5 सेकंड रूल। आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर। Big 106.2.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: Good evening, yeah, Big Thrill, मैं हूँ मानसी and biggest problem, अगर आप काफी वक्त से सिंगल हो ना, मैं अपने लिए तो बोल ही सकती हूँ, I don't want a stereotype, but आप कस्टमर केयर से बहुत लड़ते हो. यार मैं इतनी लड़ाई करती हूँ कस्टमर सर्विस वालों से, मेरी दिन की शुरुआत होती है किसी न किसी ऑनलाइन ऑर्डर, किसी न किसी वेबसाइट के कस्टमर केयर से लड़ के. आई एम नॉट लाइक दिस, मैं नहीं लड़ती हूँ वैसे, पता नहीं क्या हो गया है मुझे. आई थिंक दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ बींग सिंगल फॉर टू लॉन्ग. फिलहाल कीपिंग यू कंपनी हियर अंटिल 9. अगर आप भी सिंगल ना होने के बावजूद कस्टमर केयर वालों से लड़ते झगड़ते हो तो मुझे बताओ, आई एम नॉट द ओनली वन. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर.

0: 92, The Beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays, 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money use करो।
1: क्या? सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे benefits पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे easy local और international transfers, bill payments, free card, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Score!
4: 25 million dirhams with big tickets.
3: 5-1 million dirham prizes.
4: Plus weekly cash draws.
3: Don't miss your shot.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Missed your morning buzz?
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो।
1: अच्छा श्वेता, आपने कभी लड़के रिजेक्ट किए? आपसे बात करके मुझे लग रहा है दैट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड बी वेरी गुड एट गिविंग रिलेशनशिप एडवाइस। सो आई वांट टू आस्क यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग दैट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड। ओके, एक बाप है जिसने अपनी बेटी को एक व्हाट्सएप मैसेज किया है। मैसेज में यह था कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। बेटी ने पूछा क्यों? बाप कहते हैं क्योंकि वो लड़का ही कैन नॉट चेंज द टायर ऑफ हिज कार, वो पंचर बदल नहीं सकता। आई वांट टू आस्क यू, इज दिस क्या कैन यू चेंज द टायर ऑफ योर कार फर्स्ट ऑफ ऑल?
7: I always, if I do end up in a situation like that, I get away with asking for help. You do need to know what goes where and how is it done, and you know, you can't be completely unaware. Maybe he could give him a quick questionnaire and ask him a couple of more questions. Just on basis of tire, I don't know, but...
1: आपने वही वाला लॉजिक दे दिया है जब बच्चे पूछते ना कि पापा हम लोग ये एल्जिब्रा ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। बेटा आगे चल के कहाँ यूज होगा मुझे पता नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो द स्टेप्स बेटा। ओके,
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 29, प्रीटी ह्यूमिड टुडे, 59% पे है फिलहाल ह्यूमिडिटी।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi right here on Big 106.2, part of Fun Asia Network. Right now joining us is Faraz. Hi, Faraz.
2: Hi, how are you? Kaisi aap?
1: Main theek hoon, aap kaise ho?
2: Ji, main theek thaak.
1: Haan ji, kaisa raha long weekend, Faraz?
2: Long weekend par theek raha, lekin uske baad abhi itna traffic hai shehri zahir se phasa pada hoon.
1: अरे कोई बात नहीं, ट्रैफिक तो अच्छा है हमारे लिए, तो ट्रैफिक बहुत अच्छा है, ट्रैफिक बनाए रखे ऊपर वाला. फिलहाल फराज, आप कस्टमर केयर वालों से लड़ाई करते हो क्या?
2: बहुत गलत बात करे तो बहुत गुस्सा आता है
1: यार. मेरा तो दिन की शुरुआत होती है कि किसी ना किसी ऑनलाइन वेबसाइट के कस्टमर केयर से मैंने कुछ ऑर्डर किया होता है और बस उनसे ही झगड़ती रहती हूँ. आज मैं खुद से सुबह बोल रही थी कि मैं कब से ऐसी लड़ाकू हो गई, मैं ऐसी नहीं थी. फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने मुझे कहा कि ये साइड इफेक्ट है, अगर आप काफ़ी वक्त से सिंगल हो, कोई है नहीं आपके आसपास लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तो आप कस्टमर केयर वालों से लड़ाई करते हो. आप भी सिंगल हो?
2: नहीं, मैं तो बिल्कुल भी सिंगल नहीं हूँ.
1: अच्छा,
2: मैं तो दो वाला हूँ.
1: हाय हाय हाय, अब इस पे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो लड़कों को अच्छा नहीं लगता है. तो मतलब आप वो दोनों वाला प्रेशर उन पे निकालते होगे, कस्टमर केयर वालों पे.
2: कस्टमर केयर पे और कोई है ही नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उन पे निकाल सकूं.
1: हाँ, तो वो आपसे लड़ती हैं, आप उधर लड़ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हो. बेचारे कस्टमर केयर वाले, आई एम रियली सॉरी इफ एनीवन फ्रॉम द कस्टमर केयर इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ. ऑन बिहाफ ऑफ फराज एंड ऑफ कोर्स myself, I'd like to apologize. People, you should not take out your own frustration. मैं ऐसे नहीं लड़ती हूँ, जब कुछ गलत होता है तो ही लड़ती हूँ.
2: कल नहीं, गलत भी इंसान लड़ता है. कल जिस तरह मैंने कल एक मील मंगवाया था, उससे मैंने बोला था एक स्पाइस एक्स्ट्रा भेज देना. हाँ. तो राइडर को भी कॉल किया पहले. हाँ. कि भाई वहाँ से वो उठाते आना, जब ऑर्डर आया तो नहीं था, तो बंदा क्या करे, गुस्सा तो चढ़ेगा.
1: हाँ, गुस्सा तो चढ़ेगा, ये बात तो सही, पर प्लीज राइडर पे गुस्सा मत किया करो क्योंकि वो
2: आपके राइडर पे नहीं किया,
1: आपके मेल के चक्कर में ना यहाँ वहाँ से गाड़ियाँ निकालते हैं. मैं न्यू ड्राइवर हूँ, मुझे बहुत डर लगता है राइडर्स से. तो जिनके भी घर देर से खाना आए, प्लीज बेयर विद द राइडर्स, लेट देम ड्राइव पीसफुली. कभी गुस्सा नहीं करना है उनपे. हाँ, बट यार कस्टमर केयर वालों का भी जॉब आसान नहीं है. आपके और मेरे जैसे कस्टमर इन पर जो है लगे ही रहते हैं उनके पीछे.
2: आप जो कह रही हैं तो आपकी बात को तो सेटिंग करना ना.
1: ऐसा स्वीट के दो से दिल नहीं भरा, तीसरी की भी सेटिंग करने में लगे हुए हैं.
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सेटिंग नहीं करता अब, तौबा कर लिया दो के बाद.
1: ओह, आज किससे लड़ोगे कस्टमर सर्विस में?
2: नहीं, इतना नहीं रहता मैं, वैसे अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश मिजाज बन रहा हूँ, इसलिए तो दो है मेरे साथ.
1: मैं भी बहुत खुश मिजाज बनती हूँ, एक नहीं टिकता है मेरे साथ. क्या होता कोई कस्टमर केयर वाला मेरी लड़ाई पे फिदा हो जाए. यू नेवर से नेवर इन लाइफ. थैंक यू फराज, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय
2: बाय
1: बाय.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ली?
0: तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: पति पत्नी और वो दो, और अभी भी फराज अपनी वो दो के बारे में बता रहे थे। आई थिंक इट्स बॉलीवुड, वी नीड टू ब्लेम बॉलीवुड व्हेन इट्स नीडेड।
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: गुड इवनिंग, यह है बिग थ्रिल मानसी। फिलहाल बवाल चल रहा है निमृत कौर के इंस्टाग्राम पे, मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में। सो निमृत कौर वाज ईटिंग और एंजॉयिंग हर पोहा विद टोमेटो केचप। Exactly, if you from MP, this hurts, right? मतलब पोहा हमारे लिए सिर्फ पोहा नहीं, एक जज्बात है, एक इमोशन है। एंड पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश, चाहे वो जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, हम अपने पोहे को बहुत सीरियसली लेते हैं। मतलब देर इज अ वे टू ईट पोहा। आई एम ओके विद पीपल एंजॉइंग पोहा विद समोसा और जलेबी। जलेबी इज अ ग्रेट कॉम्बो, बट पोहा विद टमेटो केचप, I don't think so. I agree, and there I think a lot of people on her Instagram are not very happy with poha and ketchup ka combination. Nimrit ne comment kar diya hai, haters need to try this poha with ketchup. Maine bahut sare log dekhe hain jo dal chawal ke sath bhi ketchup khate hain. I'm not a ketchup person. Maggi mein ketchup laga laga ke kha rahe hain, idli ke sath ketchup kha rahe hain. Jab tak ye kar rahe the I was okay, but poha and ketchup, are you a ketchup person? Can you have ketchup with anything and everything? Please do let me know while you're at it. Instagram pe Nimrit ke poha aur ketchup combination ke saath saath is gaane ne bhi bawal macha rakha hai.

0: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
4: Yeah, right. I wish.
3: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
4: And the apartments?
3: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
4: I'm going now.
3: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
5: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: 34 डिग्रीज ऐसा गूगल कह रहा है, फील्स लाइक 42 फिलहाल। ह्यूमिडिटी है 58% पर, लो जाएगा अराउंड 29।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 5,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हां जी, ये है बिग थ्रिल मानसी। बिग डिबेट चल रहा है निमृत कौर के इंस्टाग्राम पे व्हाइल शी इज एंजॉयिंग पोहा विद केचप एंड शी सेड हेटर्स नीड टू ट्राई दिस। कमेंट सेक्शन में बवाल मच गया है टीम पोहा विदाउट केचप एंड देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि नहीं, केचप के साथ अच्छा लगता है एंड आई डोंट अग्री। केचप के साथ पोहा आई विल नेवर एवर ट्राई। राइट नाउ गॉट मानिक। हाय मानिक, गुड इवनिंग।
3: Hi Mansi, good evening, how are you?
2: I'm good. Manik, are you a ketchup person?
3: No, I just want ketchup with sandwiches and all that.
2: But you don't... Maggie maybe?
3: Maggie mein to obviously we will have ketchup.
2: ये भी एक और पाप है, मैगी में केचप नहीं डालना चाहिए। अब ये वर्ल्ड दो लोगों में, दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक जो मैगी में केचप और सब्जियां डालते हैं, दूसरे जो मैगी को एकदम ड्राई खाते हैं। तो मैगी अलग डिबेट है, बट व्हाट इज द वन वियर्ड थिंग दैट यू एंजॉय ईटिंग व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थिंक्स कि ये क्या खा रहा है मानिक?
3: व्हेन आई टेक टू बिस्किट्स एंड पुट चिली सॉस इनसाइड दैट।
2: क्या?
3: टू मोनाको बिस्किट्स with chili sauce inside.
2: Thank God you said so Monaco. Not anything else. That is fine. You know, Tabasco with the salted biscuit is still a thing. Thodi si cheese beech mein dal ke. That used to be a snack for us growing up. That is not weird. Have you ever tried noodles with raita?
3: No, never.
2: I have tried that and never I do tried. That. It is really nice. Maine sambar bhi khaya hai noodles ke saath. Single log kha lete hai, jo bhi bacha kucha rehta hai mila mulu ke. But you're definitely not a ketchup person. For sure.
3: Yeah.
2: You'll not have poha with ketchup.
3: Yeah, that's true.
2: Yeah. I think nobody should try poha with ketchup. Anyways, poha soggy hai. Usme ketchup mila diya to ho gaya kamal uska.
3: Since we are from North India, Delhi, so wahan pe itna craze nahi hai poha ka. But wahan pe jo serve hota hai, wo waise hi hota hai jo adjacent states mein hai, like MP or UP.
2: दिल्ली वालों को वैसे एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू स्टीरियोटाइप, उनको पोहा अगर वो घर पे बनाते हैं तो बनाना आता भी नहीं है।
3: नहीं आता ऑनेस्टली नहीं आता। वो पोहा नहीं बनता, कुछ और ही बनता है।
2: वो अजीब से खिचड़ी जैसा बनता है बिकॉज़ आई हैव फैमिली इन दिल्ली, राइट? सो दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक पोहा, बट दे लव पोहा। सो पोहा इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी टू मेक इफ यू डोंट नो। बट थैंक यू सो मच मानिक फॉर ज्वाइनिंग दिस केचप डिबेट। यू एंजॉय योर डिनर नाउ? अब तो डिनर टाइम हो गया, खा लिया खाना मना आपने?
3: यूजुअली वी हैव द डिनर by 6:37.
2: Very nice. So, क्या बनाया आपके आज?
3: आज तो राजमा चावल बनाए थे बीवी ने।
2: वाह यार, बीवी ट्यूसडे को राजमा चावल खिला रही है। सही है, शॉपिंग ले जाओ जल्दी, चलो। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

वैसे दिन में अगर एक बार आप भी बोलते हैं हाय कितनी गर्मी है, हाय कितनी गर्मी है, we've got a big summer surprise for you coming up. फिलहाल I'll give you all the details, but break your spar coming up. अक्षय कुमार रवीना टंडन का वो सीन फ्रॉम द प्रोमो इज गोइंग वायरल के 11 साल तक तुम थे कहाँ है, अक्षय कुमार कहता है घर पे. इमेजिन इन रियल लाइफ आप अपने एक्स के साथ सडनली काम करने लग जाओ, यू एंड अप इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम वर्क प्लेस आफ्टर 11 इयर्स. हाउ वुड यू रिएक्ट, सोचने की बात है.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey. पठाठा बड़ा है दिल नहीं देना था.
0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Good evening, यह Big Thrill है Mansi. आपके ऑफिस में आपको मोटिवेट करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं? पिज्जा खिला देते हैं, कभी लंच पे ले जाते हैं, प्रॉब्ली कुछ वाउचर्स दे देते हैं. अब एक स्टार्टअप फाउंडर इंडिया में है जो काफी वायरल हो रहा है. इसने अपने एम्प्लॉयज को प्रीमियम 3 लाख रुपए वर्थ, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, मैट्रेसेस, गद्दे गिफ्ट करे हैं. इसका लॉजिक ये है, इफ दे स्लीप flawlessly at home, they'll have zero excuses to look tired or ask for burnout days at work. And this is something which is worth commenting. We'll get back to this in just a bit. Filhal kickstarting this hour with

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 34 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 29. प्रीटी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी है 58% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: गुड इवनिंग, ये बिग थ्रिल मानसी। एंड आपको मोटिवेट करने के लिए आपका मैनेजर क्या करता है, पिज्जा पार्टी कर देता है, प्रॉब्ली टेक्स यू आउट फॉर डिनर्स एज अ टीम और गिव्स यू सर्टेन वाउचर्स। अभी एक मैनेजर है ऑफ अ स्टार्टअप जो ट्रेंड कर रहा है, इनफैक्ट इज द सीईओ, इसने अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को मैट्रेस दिया है। एवं सा गद्दा नहीं है, 3.5-4 लाख रुपए का गद्दा है, बड़ा हाईटेक है जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो। एंड इफ यू आर थिंकिंग दिस इज एन इनक्रेडिबल पर्क, आई थिंक इट इज अ ट्रैप। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग अ पर्क यू एंजॉय आउटसाइड ऑफ वर्क सो दैट यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, कंपनी ने सोचा है कि आपके नींद पर इन्वेस्ट किया जाए सो दैट ऑफिस आके आप थके हुए, बर्नड आउट या फिर आई डिडंट स्लीप वेल वाला एक्सक्यूज ना दे पाए। एंड दिस हैज स्पार्क्ड अ मैसिव डिबेट ऑनलाइन बिकॉज इमेजिन गेटिंग योर परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर योर स्लीप, लाइक आपका आज का काम सही नहीं था क्योंकि आपकी डीप स्लीप एफिशिएंसी इज एट 64%। सो या वी पुट यू ऑन द स्लीप इंप्रूवमेंट प्लान। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एलीट कॉर्पोरेट ट्रिक एवर पुल्ड। दे आर पेइंग देयर एम्प्लॉयज नॉट फॉर देयर कम्फर्ट और गिविंग देम अ पर्क बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क, दे आर ऑप्टिमाइजिंग देयर हार्डवेयर दैट इज द एम्प्लॉय। 3 लाख का मैट्रेस देने के बाद आपको क्या लगता है एम्प्लॉय जो है बोलेगा जाओ बेटा घर जाके सो? वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप 12 घंटे एक्स्ट्रा काम करें। जिंदगी में मैनेजर आपके लिए कभी भी कुछ करे ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन मोटिव 200% होगा।

0: इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कैसे बनेगा मेरा कोई लकी बॉय, जो मुझे डीएम ही ऐसे ऐसे आते हैं यार, सच्ची बोल रही हूँ। अभी अभी एक डीएम फ्रेश आया है।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एंड शायद जिसने भेजा है वो अभी भी मुझे सुन रहे हो, एंड ही इज फ्रॉम बैंगलोर एंड आई थिंक ही लिसन्स टू मी ऑन द ऐप। तो इन्होंने लिखा है, लवली ड्राइविंग अराउंड बीइंग सिंगल एंड लिसनिंग टू यू मानसी। बाय द वे, योर लाफ रिमाइंड्स मी ऑफ चाची ताड़का। जस्ट किडिंग, लव फ्रॉम बैंगलोर। मुझे तो पता भी नहीं था कि चाची तड़का है, चाची ताड़का है कौन। मैंने गूगल करा, गूगल करने के बाद समझ में आया, शी इज़ काइंड ऑफ फ्रॉम द रावण्स फैमिली। बेसिकली फीमेल रावण है चाची ताड़का। देखो, अगर मुझे एक्सेप्ट करना है ना तो मेरी हंसी के साथ करना होगा। मुझे किसी ने बहुत पहले बचपन में कह दिया था, जिस लड़के को तेरी हंसी ना अच्छी लगे ना, बस उस लड़के को भाव देना ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई होगा जिसे मेरी हंसी भी अच्छी लगे।

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.